मशवरा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: लौड़ो सक्यो गुलाल ए कोई छा भने लौड़ो लौड़ो सक्यो
1: हैन पानी ल्याउनु
2: पानी ले पानी ले पानी यताले पानी लौड़ो लौड़ सक्यो मुत्यो त त्यता
3: समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.5